एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ये प्यार की जो कहानी है ना, क्रिश फिल्म दा गाना सीगा, कहानी भी क्रिश फिल्म दी। आकाशवाणी फिल्म रेनबो दे प्रोग्राम चल रहा थोड़ा अपना गीत बहार विद मी आरजे गरिमा। सो या ऋतिक रोशन प्रियंका चोपड़ा दी फिल्म क्रिश, एंड चलो कोई मिल गया तो बाद क्रिश फिल्म आई सी ना उदों जादू नू मैं बहुत ज़्यादा मिस किया सीगा कि हाए कोई मिल गया विच किन जादू का किन्ना ज़्यादा स्क्रीन टाइम सीगा, जादू ही जादू सीगा, एंड मैजिक तक क्रिश फिल्म ने भी बिखेरिया सी बट विदाउट जादू। सो चलो एनीवेज धूप वाले जादू की गल आप फिलहाल ना ही करिए लंबी, बिकॉज की है नहीं तो धुप निकल आएगी बहुत ज़्यादा। वैसे मौसम काफ़ी वधिया हो गया सीगा, पर ऑफकोर्स हूँ धुप निकल आई है, बट स्टिल वैदर इज़ रियली प्लेजेंट टूडे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा चंगा लगता है। इतना पुराने गाने वधिया वैदर के सुनो, आह क्या बात है। अगला गाना तुम इंजॉय करो, आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे गीत बहार विद मी आर जे गरिमा एंड सोनू निगम मैन अलका याग्निक की आवाज़ फिजा फिल्म का गाना, एंड यस हियर वी गो, स्टे ट्यून्ड।

करिश्मा कपूर वॉज लुकिंग सो सिजलिंग इन दिस सॉन्ग. व्हाट्स अप सो जी, की हाल चाल. वंस अगेन गीत बाहर प्रोग्राम तुम दस रही की सुन रहे हो तुम थोड़े अपने एफ एम रेनबो ते विद मी आर जे गरिमा. सो फिजा फिल्म तो गाना इंजॉय किया एंड बहुत ही एक हटके फिल्म सी 2000 विच आई एंड ऋतिक रोशन की अर्ली मूवीज चो एक. लो जी ऋतिक रोशन देखे और फिल्म तो गाना लगाता मैं एक्चुअली कहो ना प्यारे तो बाद यही फिल्म सी जिस ऋतिक रोशन देखा गया सी. पर मेन हीरो इस फिल्म फिजा यानी कि करिश्मा कपूर. सो करिश्मा कपूर नो बेस्ट एक्ट्रेस

अवार्ड मिला सीगा फॉर दिस मूवी. एंड जया बच्चन जो कि मदर बनी हुई सीगी करिश्मा एंड ऋतिक दी उन्होंने भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिलया सीगा, एक्चुअली अवार्ड मिलया सीगा. सो दोनों अवार्ड दोनों मिले सीगे कितने 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स दे विच. सो यस, बहुत ही एक हटके फिल्म सी. एंड बाय द वे फिलहाल नेक्स्ट गाना जो है वो भी काफ़ी हटके है. एंड के दी आवाज़ दे गाने वैसे भी हमेशा हटके होंगे ने, इंजॉय करो. तो हाड़े अपने प्रोग्राम गीत बहार दे विच उद्मी आरजे गरिमा ओनली ऑन FM Rainbow.

हॉन्टेड थ्रीडी फिल्म तो एक गाना एंजॉय किया तो सी आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना गीत बहार विद मी आरजे गरिमा यू नो हॉन्टेड थ्रीडी 2011 दी एक ऐदा दी फिल्म सी लाइक ओ इंडिया दी पहली 3D हॉन्टेड फिल्म सी जो कि कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही सी एंड लोकेशंस ऊटी दियाँ सीगिया जिते कि कलोनियल एरा रहा सीगा किसे टाइम सो यस इहदे विच मिथुन चक्रवर्ती दा जो बेटा है मीमो चक्रवर्ती ओ सी विद टिया वाजपाई एंड काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म नूं पसंद किया गया सी इस तो बाद सीक्वल भी आया सीगा हॉन्टेड 3D दा बट जो 2011 दी एवली हॉन्टेड फिल्म सी दैट वॉज लाइक बाय गॉड दी कसम बहुत एक तो हॉन्टेड भी सी मतलब डरावनी भी सी उतों दी इहदे विचों इमोशंस एंड प्यार दिखाया गया है वह भी काफ़ी ज़्यादा हटके सी उतों दी टाइम ट्रैवल मीनस जो हीरो है दे पास्ट में चला जाता है अपना जाने किन्ने साल पिछे चला जाता है जो ब्रिटिशर्स का राज हुंदा सी तो उदो अपनी हीरोइन मिलता है फिर उस तो बाद प्रेजेंट विच आ जाता है अपनी हीरोइन सारिया मुसीबतों तो छुड़ा के सो बहुत ही इमोशनल तो बहुत ही प्यारी फिल्म सी फिलहाल प्यारे प्यारे गाने तो प्यारिया गलों का जो सिलसिला है जारी है बिकॉज प्रोग्राम का नाम गीत बहार है एंड अगला गाना सोनू निगम एंड अलीशा चन्नौई की आवाज़ इंजॉय करो स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का। आरजे गरिमा दे नाल नेक्स्ट कॉलर दे नाल गलबात करदे हां आपां। हेलो
1: हेलो,
0: हां जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी मैं सीताराम बोल रहा हूं जी। पहले तो नमस्कार जी तुहानू।
0: नमस्कार सीताराम जी।
1: मैडम जी मैं अपने इत्थों मॉडल टाउन ब्लाइंड स्कूल है जी, उत्थों बोलदे पए जी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत उधरो दी तुसी उत्थे रहंदे हो तुसी या किस तरीके नाल स्टाफ है?
1: हां जी हां जी, साडा इत्थे आश्रम है जी ते इत्थे लगभग 15-20 जेड़े मतलब बंदे है जिन्हां नूं दिखदा नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ते इत्थे असीं रहंदे हां जी।
0: क्या बात है जी, बहुत वधिया। ते रेडियो नाल किस तरीके नाल किन्ने टाइम तो जुड़े हुए हो?
1: हां जी रेडियो नाल ते मैं काफी देर तक जुड़े हां जी।
0: ओके, काफी साल हो गया।
1: हां जी काफी साल हो गए, ते कट के मेरा फोन पहला तो चलो लग जांदा सी उहदा कि 4 महीने वाला ते।
0: अच्छा अच्छा, ओके दैट्स रियली नाइस सीताराम जी। सो होर कुछ कहना चाहोगे, गाना दसना चाहोगे, केड़ा सुनना है तुसी आज?
1: गाना जी सुनना चाहना जी खाली खाल इश्क दी गली तो कोई लगता।
0: अच्छा ओके ठीक है, कच्चे धागे फिल्म तो एक गाना है, जरूर थोड़े प्ले करांगे। बहुत वधिया थोड़ी फरमाइश, थैंक यू कॉल करने लिए।
1: जी जी बहुत-बहुत थोड़ा भी धन्यवाद जी।
0: ओके सीताराम जी दे लिए एक गाना, एंड तुसी भी कॉल लगा सकते हो, अपना फेवरेट जिहड़ा पंजाबी गाना है प्ले करवा सकते हो थोड़े अपने आकाशवाणी एफएम रेनबो ते। आरजे गरिमा दे नाल बने रहो, स्टे ट्यून्ड।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते वक्त है छोटे जे कमर्शियल ब्रेक दा प्रोग्राम पंजाबी तड़का जारी रहेगा गाने सब कुछ जारी रहेगा बस एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो
1: एक जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों

सो जी, ये गाना एंजॉय किया था आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। सो जी, अज मैं जिस सुपर फूड के बारे दसन जा रही हाँ, उन्हें तुम ज़्यादातर कि खादा होना है सांभर के आई आई यो आई लव साउथ इंडियन जी बिकॉज साउथ इंडियन जो सांभर डोसा है वो बहुत सारे जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ने सांभर के ड्रम स्टिक्स पाते हैं एंड ऑफकोर्स घर के आप सांभर बनाइए ड्रम स्टिक्स आप एड करते हैं साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज की जाए ने फेवरेट होंदिया ने लोगों दिया। सो वाई ड्रम स्टिक्स इन्ना सुपर फूड क्यों है? देखो ड्रम स्टिक्स कहंदियां ने मैं सिर्फ आपां सिर्फ लंबिया नहीं हैगियां बल्कि फायदे विच भी आपां नंबर वन हैगियां वा। सब तो पहला इम्यूनिटी, विटामिन सी ते एंटीऑक्सीडेंट्स जो ने इन्हां विच जिहड़े हुंदे ने सर्दी खांसी जिहड़ी ना सोचती रह जाती है कि मैं जावां कि ना जावां बिकॉज ड्रम स्टिक्स खाधी हुई है इंसान ने, इम्यूनिटी बूस्टर हुंदियां ने इन शॉर्ट। इस तो अलावा फिर हड्डियां ते जॉइंट्स की गल करिए, कैल्शियम आयन मैगनीशियम मतलब दादी माँ वाला नुस्खा साइंस की स्टैंप के नाल यस ड्रम स्टिक्स इन्नी ज़्यादा ताकत होंगी है। सो जो तुम कहते हो फोकस नहीं लगता मूड ऑफ रहा है तो ड्रम स्टिक्स कहंदियां ने मैं हाँ ना किसका है कि तुमको इंतजार मैं हूँ ना, बिकॉज ड्रम स्टिक्स होंगे विटामिन बी एंड इम्यूनो एसिड्स। सो एनर्जी ते मूड दोनों ही ऑल सैट हो जाते हैं, हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा वधिया, कोलेस्ट्रोल नू बैलेंस रखदियां ने ड्रम स्टिक्स। एंड इस अलावा डाइजेशन की गल करिए फाइबर बहुत ज़्यादा है इन्होंने ड्रम स्टिक्स के, यू नो पेट जोड़ा है ना वो भी कह दे शुक्रिया जी अज ट्रैफिक क्लीयर हो गया ड्रम स्टिक्स तुम ऐड कि। सो इन ज़्यादा पावरफुल होंगे फाइबर युक्त होंगे ने एंड स्किन तो हेयर के लिए तो माशाला क्या ही गल् ने बिकॉज स्किन ग्लो होंगी है एंड हेयर की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा वधिया होंगी है। पार्लर की अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट हो जाएगी ताकि बिकॉज थोड़ी जी स्किन है उन्हें फेशियल की लड़ ही नहीं पेगी जो ड्रम स्टिक्स ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਬਈ ਸਾਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਿੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਂ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਸਲੋ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜੇ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਘਰ ਸਾਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਡਰਮ ਸਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਈ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਵਿਦ ਮੀ ਆਰ ਜੇ ਗਰਿਮਾ ਓਨਲੀ ਔਨ FM Rainbow।

परौंठी नाल खाओ या फिर गर्मा गर्म फुलके नाल खाओ या राइस नाल खाओ. ऑल राइट, पर गाना जो है फ्लाई करके आ रहा है, जरूर इंजॉय कर लो. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा.

व्हाट अ सॉन्ग. देखो जो गाना है ना साजन की सहेली, अ फिल्म द नाम भी साजन की सहेली बिकॉज इट इज अ टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी. तो इंजॉय किया तो अपने आकाशवाणी एफ एम.

ना अभी दिन ढला है ना अभी शाम हुई है, लेकिन मुझे अभी आधे घंटे तक ही जाना है। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी, तो हाडा अपना मिड डे मेलोडीज आज गरिमा दे नाल है। गाना सुन के इतना लगता है बैडमिंटन खेल लो भाई, दिल कर पैंदे ना बैडमिंटन खेलन दा, बिकॉज बैडमिंटन कोर्ट दे विच इस गाने नू शूट किया गया है। 1970 दी फिल्म हम जोली दा है रोमांटिक सॉन्ग, जतेंद्र एंड लीना चंद्र वारकर दे उत्ते यू नो पिक्चराइज सीगा। सो यस बहुत ही देखो महमूद दा एदे विच ट्रिपल रोल सीगा इस फिल्म दी खास गल। महमूद ने तीन जनरेशन दा रोल प्ले किया, सन दा, फादर दा एंड ग्रैंड फादर दा भी, बाई गॉड दी कसम। एंड कुछ सीनियर रोल्स सीगे जिन्होंने मिमिक किया गया, पृथ्वीराज कपूर एंड राज कपूर होर। सो बेसिकली इस फिल्म दे विच जितेंद्र नू लग्या कि मेरा रोल तो बड़ा ही छोटा है, बिकॉज महमूद दा जो रोल है काफ़ी ज़्यादा नहीं महमूद दे रोल, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग थ्री रोल्स थ्री जनरेशन। सो इस करके जितेंद्र दे रोल नू थोड़ा जा एक्सटेंड किया गया, थोड़ा वड्डा बनाया गया। एंड ऑफकोर्स मुमताज दा एक स्पेशल कैबिनेट सॉन्ग भी इस फिल्म दे विच, एक्चुअली बहुत सारी वेरिएशन सीगियां जो कि इस फिल्म नू बहुत ज़्यादा खास बना चुकियां सीगियां। हम जोली 1970 दी फिल्म तो एक गाना जो कि सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना सी जो तुसीं इंजॉय किया। फिलहाल मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम दे विच नेक्स्ट सॉन्ग तुसीं इंजॉय करोगे, बिकॉज अगला गाना जो है वह है फ्रॉम फिल्म हीना। हीना फिल्म तुसीं देखी होनी है जदों वो चिट्ठी लैके जाती है तो गाना जो है गाँदी है, जो गाना एक्चुअली लता मंगेशकर जी ने गाया है। सो इंजॉय दिस ट्रैक फ्रॉम मूवी हीना, तुहाडे अपने प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ विच बने रहो आरजे गरिमा दे नाल ओनली ऑन एफएम रेनबो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी

से डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना रखो बहुत सारा ख्याल, अपने आप में करो बहुत सारा प्यार। ते सुनते रहो 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।

तुम कभी नहीं आओगे, मैं जानता हूँ कि तुम कभी नहीं आओगे, ना दोबारा दिखाई दोगे तुम मुझे, मुझको कभी आवाज़ दोगे ना, मुझसे कभी मिलने आओगे ना, तुम्हारी बातें मेरे कानों तक आएंगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान थे, इन्होंने मलेरकोटला तो सानू मैसेज भेजे, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत की थी प्रोग्राम दे विच। इदां ही सानू तुसी मैसेजेस भेजते रहो, नंबर नोट डाउन कर लो जी 9855101027।

मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है। मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है। मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी अपना है। मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, दिल ने कहा वो सदियों का साथ है। मैंने कहा वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है।

तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लूं, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में सवार लूं। मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह मेरी, सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार लूं। कितना सोहना लिखिया है ना कि तेरा जिहड़ा तेरे हर गम नूं मैं अपनी जिंदगी दे विच उतार लूँ, अपने मन दे विच उतार लवां ते तेरी चाहत नूं अपनी जिंदगी बना लवां। यही है मुहब्बत, यही है प्यार, यही है इश्क। ते लिखी है जी खूबसूरत जी शायरी साडे अकबर इलाहाबादी जी ने, ते उन्हां दी की ही तारीफ करिए आपां, है ना। हर शायरी दे विच कुछ ना कुछ खास जरूर हुंदा है, ते जिद्दां साडे दोस्तां दीआं शायरीआं दे विच कुछ खास हुंदा है, लेकिन एक गल ना मैनूं बड़ी परेशान करती है। ये गल है जी, असीं कहिंदे आ शायरी, लेकिन तुसीं कवितावां भेज दिंदे हो, चलो वह भी ठीक है, लेकिन गाणियां दे बोल तां ना भेजो तुसीं, है ना। तुसीं गाणियां दे बोल दी जगह सीधा शायरी भेजो, जिहड़ी राइमिंग भी होवे, जिहदा मतलब भी होवे। ते मैनूं भी पढ़ के समझ नहीं लगदा कि तुसीं की कहना चाहुंदे हो, क्योंकि ये प्रोग्राम ही इदां दा है जिहदे विच असीं सुनना चाहुंदे हाँ तुहाडे दिल दे जज्बात, तुहाडियां गल्लां, जिहड़ी मैं फिर कह रही हाँ तुसीं भेजोगे सानूं शायरी दे जरिए। जिदा सानू भेजी है जी गगनप्रीत कौर जी ने सानू एक शायरी भेजी है, बहुत दिल चाहता है कि कह दूँ तुझे, बहुत दिल चाहता है कि कह दें तुझे कि तू बहुत अच्छा लगता है मुझे, तू बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुक जाते हैं ये सारे पल, क्या कहेगा वो जमाना, लेकिन मुझे तो प्यार है तुझे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है तू मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जी गगन जी, प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती ते अपनी शायरी साडे नाल सांझी कीती। चलो जी, मैनू लगदा है टाइम तां ज़्यादा नहीं है, फिर भी 7 मिनट साडे कोल हैगे ने। देखते हाँ किहड़े किहड़े साडे दोस्त ने जिहड़े हले जाग रहे ने, सुते नहीं है, ते क्योंकि देखो दोपहर का समा ही इदा का होंदा है, थोड़ी थोड़ी नींद आ ही जाती है लंच करन तो बाद। लेकिन जेकर तुसी हले भी जाग रहे हो ना, तो मेरे नाल तुसी 7 मिनट दे विच अपने दिल की कोई भी जिहड़ी प्यारी जी फेवरेट जी तुहाडी शायरी है सांझी कर सकते हो। नंबर नोट डाउन कर लो जी, 9855101027।

0: पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोतो, हीमोफीलिया सामान्य भाषा में कहें तो रक्त स्त्राव यानी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा हो तो हीमोफीलिया एक वजह हो सकती है। कैसे हो इस रोग का निवारण, इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड हीमोटोलॉजी यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता जी भी, जो है सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय जी, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार श्रोता।
1: और नमस्कार आपको डॉक्टर श्वेता जी।
3: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं वो आपने जान लिया है कि किस तरह से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि कैसे होता है ये रोग?
2: ये हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त स्राव का रुकना नहीं हो पाता है। तो इसके लिए पहले, सबसे पहले श्रोतागण को हम ये बतलाएं कि रक्तचाप रुकता कैसे है। मान लीजिए धमनियों में या कोई चोट लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है जी। तो थक्का का बनना बड़ा आवश्यक है, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, और उसके लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं वो जरूरी हैं हमारे शरीर में। उनमें जो मुख्य रूप से Factor 8 और Factor 9 हैं, और यदि ये तत्व हैं तो वो फिर थक्का प्रॉपर जमता है, और अदरवाइज इसमें क्या होता है कि रक्तस्राव रुकता नहीं है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में है, और उसी प्रकार से रक्तस्राव ज़्यादा या कम होता है, लेकिन रक्तस्राव बढ़ जाता है, ये इसमें हीमोफीलिया में होता है।
1: इधर हम डॉक्टर साहब का स्वागत तो कर ही चुके हैं, आगे अभी एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो डॉक्टर विजय सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हीमोफीलिया के लक्षण क्या हो सकते हैं।
1: हीमोफीलिया के जो लक्षण हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका सीवियरिटी कितना है। और इसमें उसके पहले मैं श्रोतागण को ये

0: बता दूं कि सिवियरिटी जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या ये हल्के किस्म का हीमोफीलिया है या मध्यम किस्म का या गंभीर किस्म का है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे थक्का जमाने वाले तत्व हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9, वो उसमें यदि कमी की मात्रा ज़्यादा हो तो लक्षण ज़्यादा उसमें होते हैं मरीज़ को। और इसमें जैसे हल्की चोट लगने के बाद किसी में खून का रक्त स्राव होता है, किसी में खुद से ही रक्त स्राव होने लगता है।
1: जी
0: तो ये इसी बात पर निर्भर करता है, जैसे दांतों में मान लो किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है और उसका खून नहीं निकल रहा, रुक रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उसके अलावा भी जैसे ज्वाइंट में, जैसे ये जितने जोड़ हैं हमारे, खास करके जो एड़ियों के जोड़ हैं या घुटनों के जोड़ हैं या फिर कोहनियों के हैं, जो एल्बो ज्वाइंट है, उसमें ये ज़्यादातर जो सीवियर किस्म के होते हैं, गंभीर किस्म के हीमोफीलिया वाले मरीज, उनमें ये वहाँ पे ब्लीडिंग होता है।
1: जी
0: और यही नहीं, ये मसल के अंदर भी, और मसल के बाद ये जैसे आंतों में भी आपके इस तरह के ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो ये लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि गंभीरता कितनी है।
1: जी डॉक्टर सर, आपसे बहुत कुछ आगे जानेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लाइन पर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हाँ जी, सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से।
1: जी
2: हाँ
1: सलाउद्दीन, स्वागत है आपका। बताएं क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आज हमारे साथ दो
2: जी,
1: दो विशेषज्ञ मौजूद हैं।
2: चल पहले तो ये जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पर, बड़े बहुत अच्छा वक्त निकाल के, टाइम बहुत कीमती होता है इनका।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
2: हाँ सर, ये पित्ती जो उछल जाती है जी, खून में क्या परेशानी है, उसके बारे में पूछना था जी।
0: इसमें ऐसा है सलाउद्दीन जी, आपने जो सवाल पूछा है उसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाता हूँ। क्या होता है कि जो जैसे आप यदि ग्रामीण परिवेश से हैं या खेतों में देखा होगा, जो पाइप है, पानी फटता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पत्थर रखते हैं या कोशिश करते हैं कि खून उसमें पानी रुक जाए। उसके बाद नहीं रुकता है तो उसमें हम एक कोई सूती कपड़े लेके उसको बांध देते हैं। आप इसी चीज़ को आप शरीर के जो रक्त स्राव है उस पर आ जाएं, तो हमारे शरीर के अंदर एक प्लेटलेट है जो एक तरह से पत्थर जो आपने रखा, वो शुरुआती पत्थर की तरह काम करते हैं। जब किसी धमनी में किसी प्रकार का कोई आपको डैमेज होता है, वो कोशिश करते हैं रोकने का, लेकिन जैसे पत्थर नहीं रोक पाते हैं, उसी प्रकार से ये भी प्लेटलेट उतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो एक तरह से आप समझें कि सूती कपड़े की तरह है, वो मेसवर की तरह, और वो पूरी तरह से उसे लपेट के पत्थर की तरह, पत्थर के ऊपर, और खून को रोक देता है। तो ये जो आप खून के स्राव के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9, जो इस तरह के फैक्टर 1 से लेकर 13 तक की संख्या में होते हैं, उसमें ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हीमोफीलिया के लिए जिम्मेवार हैं। इनकी कमी से ये थक्का जो मैंने आपको अभी बताया नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि खून का स्राव होता रहेगा।
2: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत
1: जी आपका भी
0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर श्वेता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है हीमोफीलिया में।
3: देखिए, अगर फिजियोथेरेपी के बारे में बात करें तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हीमोफीलिया के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ज्वाइंट के अंदर जोड़ों में ब्लीडिंग होती है, मांसपेशियों में भी ब्लीडिंग होती है। तो जब कभी भी इस तरह की ब्लीडिंग होती है तो उससे जो ज्वाइंट है वो इंटरनली डैमेज हो जाता है, उसके अंदर नुकसान पहुंचने लगता है। और बहुत सारे सिम्टम्स, अगर हम लक्षण की बात करें तो जोड़ में और मांसपेशियों में वो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जिसके अंदर दर्द आना, सूजन होना, मांसपेशियों में थक्का बन जाना और अकड़ान या जकड़न आ जाना, इस तरह की परेशानियां हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा रोल इसके अंदर यही है कि जो जोड़ है हम उसको बचा के रखें। अगर इंटरनल इंजरी हो गई है तो आपको उसको किस तरीके से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी के जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज हैं उसके आप उससे कैसे मदद ले सकते हैं, किस तरह से आपके दर्द को, सूजन को, अंदरूनी जो भी चोट पहुंची है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन मरीजों में बार बार रिकरेंट ब्लीडिंग होती है उनके जोड़ इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के घुटनों जैसे या कोहनियों जैसे लगने लगते हैं, और एक तरह का डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर भी बन जाता है जिन मरीजों में पूरी तरह से इलाज नहीं होता है या जो इग्नोर करते हैं या जिनको नहीं पता होता कि इलाज किस तरह से कर सकते हैं इसका, तो हम उन डिफॉर्मिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी बहुत सारे सवाल हैं अभी आपसे भी जानने को। फिलहाल अभी डॉक्टर विजय सर के पास मैं लौटना चाहूंगी कि सर हीमोफीलिया होने के क्या कारण हैं।
0: ऐसा है कि ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा अनुराधा जी, क्योंकि हीमोफीलिया अमूमन लोगों को ऐसा लगता है, ये एक मिथ है या भ्रांति है कि किसी के परिवार में हो गया और देखा कि 2-3 जनरेशन से हो रहा है तो कोई अभिशाप मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें क्या है कि इसमें एक आनुवंशिकता का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें होता ही है।

0: है कि आप ऐसे समझें कि जो ये थक्का जमाने वाले तत्व को जो प्रभावी करते हैं उसको जीन कहते हैं, वो हमारे शरीर में जैसे महिलाओं में या लड़कियों में जिनका क्रोमोजोम एक्स और एक्स होता है, इसको मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाऊंगा कि आसानी से समझ पाएं हमारे श्रोता, तो उसमें एक्स पे ये फैक्टर 8 या 9 बनाने वाले जो तत्व हैं थक्के जमाने के लिए वो उस पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से आपके पास डबल इंजन हो गई, एक्स और एक्स दो हो गए महिलाओं में या लड़कियों में। जो पुरुष हैं या जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि उनका जो आप देखेंगे एक्स और वाई होता है कॉम्पोजिशन, तो ये एक्स और वाई का मतलब है कि सिर्फ एक ही है। और मान लीजिए किसी वजह से वो यदि खराब हुआ, जीन में यदि कोई गड़बड़ी आई, तो उस वजह से यदि महिलाओं में होगा तो कम से कम एक है जो नॉर्मल बचा हुआ है, जिसकी वजह से महिलाओं में या लड़कियों में यह समस्या नहीं आती है, ना के बराबर आती है। जबकि बच्चों या फिर पुरुषों में यह समस्या, जाहिर सी बात है कि एक है और खराब होगा तो हीमोफीलिया के इसमें शिकायत आएगी। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि मान लीजिए किसी में किसी मेल ट्रांसमिट कर सकता है, वो हीमोफीलिया किसी को दे सकता है, तो लड़कियां जो हैं या जो महिलाएं हैं वो उसको कैरी करती हैं कैरियर की तरह, और वो अगले जनरेशन में पुरुषों को देती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक ही एक्स क्रोमोजोम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब भी लेते हैं इस तरह से, तो ये इसका आनुवंशिक कारण है जिसकी वजह से ये हीमोफीलिया होता है।
1: तो हीमोफीलिया क्या एक ही प्रकार का होता है डॉक्टर साहब, या कई प्रकार के होते हैं?
0: हाँ, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है अनुराधा जी। इसमें हीमोफीलिया में दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्टर 8 जो होता है जिसकी कमी से हीमोफीलिया A कहलाता है, और फैक्टर 9 है जिसकी कमी को हम लोग हीमोफीलिया B कहते हैं
1: जी।
0: और इसमें कमी भी आप ये मान के चलें, एक थोड़ा श्रोतागण को मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा समझने के लिए कि हीमोफीलिया जो होता है ऐसा नहीं है कि फैक्टर थोड़ा भी कम हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाएगा। इसमें यदि मान लो आपके फैक्टर होने चाहिए जितने, 100 होना चाहिए, और यदि 100 से घट के वो 1 से जब कम होगा तभी वो गंभीर प्रकार की हीमोफीलिया का सामना करेंगे। तो ये जो गंभीर किस्म है उसमें less than 1% यानी 1% से कम होना चाहिए जो थक्के बनाने वाले तत्व हैं फैक्टर 8 या 9। उसी तरह से मध्यम वाली जो बीमारी है उसमें इनकी जो मात्रा है 1 से 5% है, और जो गंभीर बीमारी है जो माइल्ड बीमारी है जो हल्की बीमारी है वहाँ 6 से 40% तक इसकी मात्रा होती है। यानी कि 40% से ऊपर हो तो एकदम नॉर्मल होता है इंसान। तो इससे आप समझ लें कि जो लक्षण है वो इसी प्रकार से, जो गंभीर समस्या है सिर्फ वहीं पे रक्तस्राव की ज्यादा समस्या आती है।
1: डॉक्टर श्वेता जी के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता जी बताएं कि बार बार अगर हो रहा है हीमोफीलिया की जो समस्या, तो किस तरह से इसका निवारण किया जाए आपके अकॉर्डिंग?
2: जी, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 तरह के फेज रहते हैं, कभी भी चोट लगती है तो एक एक्यूट फेज होता है कि तुरंत आपको हुआ है, उसका असर लगभग 2 हफ्ते तक रहता है। तो एक्यूट फेज में जो हमारा फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो एक अलग किस्म से होता है, जिसपे हम ज्यादातर मरीजों को बोलते हैं प्रोटेक्शन रखें, प्रिजर्व रखें अपने जॉइंट को, जिस भी जॉइंट पे असर आया है। इसके अलावा उस पर आप आइसिंग करें, उसको कंप्रेशन बैंडेज के साथ सपोर्ट दिया जाता है ताकि जॉइंट प्रोटेक्टेड फेज में रहे, और एलिवेशन यानी लिम को थोड़ा सा ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि सूजन कम हो, क्योंकि अंदरूनी जो रक्त स्राव हो रहा है वो अंदर की मांसपेशियों पे, जोड़ पे, कार्टिलेज पे, हर चीज पे प्रेशर या असर दे रहा है। तो ऐसे केस में हमें रेस्ट सबसे ज्यादा मरीज को बोला जाता है कि वो आराम करे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेस ऐसे फेज में नहीं की जाती। लेकिन अगर रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, तो उनका वो आदि हो चुका है ना, और उनको पता है कि मेरे को ऑलरेडी पहले इस जोड़ में ये परेशानी हुई है, फिर से हुई है, उस कंडीशन में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अलग आते हैं। उसमें मरीज के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोरी में चली जाती हैं एक पोजीशन में पैर रखने की वजह से, क्योंकि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, उस जोड़ को थोड़ा रेस्ट देना है, तो उस कंडीशन की वजह से भी वहां पर कुछ तरह की डिफॉर्मिटीज, या ये आप समझ लें कि एक तरीके से अलग प्रकार से रखना अंगों को रखने से थोड़ा सा वहां पर तनाव या कसाव महसूस होने लग जाता है। तो क्रॉनिक फेज की जो फिजियोथेरेपी है वो अलग किस्म से होती है, उसमें हम एक्सरसाइजेस करके मरीज को थोड़ा सा मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ को मजबूत बनाने के लिए सलाह देते हैं। और एक चीज पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगी, श्रोतागण को बताना चाहूंगी कि कोई भी एक्सरसाइज हीमोफीलिया की कंडीशन में आप अपने आप से खुद से ना करें, ये बिल्कुल सलाह और परामर्श के सहारे से ही करनी है। अच्छे से आप सलाह लें किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है जोड़ के लिए, और वो किस प्रकार करनी है, कितनी करनी है दिन भर में, उसी तरीके से करें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली है। आगे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: काजिम जी, क्या जानना चाहेंगे? हमारे दो दो विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं, बताएं क्या सवाल करना चाहेंगे।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार काजिम।

0: डॉक्टर साहब, मुझे पूछना ये है कि जो हीमोफीलिया है, इसका डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, और फैक्टर जो 8 और 9 की आपने कमी बताई, मतलब कि दो तरह की हीमोफीलिया है, क्या दोनों के सिम्टम्स में कुछ फर्क है, दोनों में क्या अंतर है?
1: जी हाँ, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। पहले तो हम आते हैं आपके पहले सवाल पे कि ये इसमें कैसे डायग्नोसिस पे आए हम इसको, क्योंकि निवारण के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहला तो है, ये जब मरीज में ये लक्षण आते हैं उसी से हमें ये शक पैदा होता है कि यदि किसी के परिवार में, मान लीजिए किसी जो मरीज है, छोटा बच्चा है, उसके ग्रैंड पेरेंट नाना जी को ये ऐसी बीमारी थी, या और परिवार के किसी सदस्य को, उसके भाई को या किसी पीयर ग्रुप को, तो उससे हमें शक होता है कि कहीं ये खून रक्त स्राव अधिक हो रहा हो, तो उसमें हमें ये शक होता है कि ये बीमारी हो सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी है कि इस कंडीशन में हम कुछ जाँच करते हैं। सबसे जो है उसमें हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं, उसमें हम लोग एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दो तरीके के होते हैं। मतलब थक्का, इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो हम खून को जब हम लेते हैं तो ये देखते हैं कि थक्का जो है वो सही समय में जम रहा है या वो ज़्यादा समय ले रहा है। इसी को साइंटिफिकली या मेडिकली हम दो टेस्ट का नाम दे रहे हैं। और यदि वो ज़्यादा समय में जम रहा है, जिसको हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कहते हैं, इसका मतलब है कि संभावना हो सकती है कि ये थक्के बनाने वाले जो तत्व हैं वो उसकी कमी हो। अब इसमें कमी जो है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, और उसमें एग्जैक्ट हम परसेंटेज प्रतिशत बता सकते हैं कि वो कितनी मात्रा है। जैसे फैक्टर 8 है, वो कितनी मात्रा, अभी थोड़ी देर पहले यदि आपने अपना रेडियो ऑन किया होगा तो मैंने बताया था कि यदि 1% से नीचे है तो गंभीर किस्म का हीमोफीलिया होगा, 1 से 5 है तो मध्यम प्रकार का होगा, और यदि वो 6 से 40 है तो वो माइल्ड या हल्के किस्म का होगा। तो ये हो गया हीमोफीलिया के। अब हम इसमें डायग्नोसिस करने के बाद, जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का थोड़ा फर्क ये होता है कि उनमें लाक्षणिक दृष्टि से दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फैक्टर 8 का जो नॉर्मली आप देखेंगे कि इनका जो है ज़्यादा, ये ज़्यादा सामान्य या ज़्यादा मतलब बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यदि आप 100 मरीज देखें तो 70 से 80 अमूमन देखा गया है कि हीमोफीलिया ए प्रकार के होते हैं, जो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से या कमी से होता है। फैक्टर 9 वाले में यह अमूमन करीबन 20% के आसपास से होता है। तो ये लक्षण के हिसाब से सिमिलर है, लेकिन इनकी जो जो होने की जो दर है वो दोनों में अलग अलग है।
2: डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब आपने दे दिया। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज जी जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरे लड़के की एज अभी 11 साल है, उसके नोज से ब्लड निकलता है, कुछ दिनों के बाद 2022 में ESI में दिखाया था, सारे टेस्ट हो गए थे, सब कुछ नॉर्मल निकलता है। डॉक्टर ने कहा कि नाक के टिश्यू कमजोर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, क्या इनके लिए विकल्प है?
1: ऐसा है कि इसमें जो आपने बताया कि ये पहला तो लड़का है, तो ये आप मान के चलें कि ये लड़के में यदि 11 साल के पहले, अब हमें ये नहीं पता है कि आप ये बता रहे हैं कि क्या इसको शुरू में 1 साल 2 साल या पहले कोई मतलब खून अधिक रिसाव की समस्या थी या नहीं, ये हमें आपके सवाल से पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये आप मान लें कि नाक से खून बहने के बहुत आयत कारण होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हीमोफीलिया ही है। और उसमें जो सबसे आम कारण है वो जैसे नोज पिकिंग, जैसे बार बार बच्चा यदि नाक को खुजा रहा है और उसमें यदि नाक में सूखापन है तो उससे भी खून कभी कभी आ सकता है। और भी आप ब्लीडिंग के या अधिक रक्त स्राव के प्लेटलेट काउंट को करना पड़ेगा, यदि हम देखेंगे कि क्या है उसका प्लेटलेट काउंट या क्या उसके किसी प्रकार के फंक्शन में कोई कमी आ गई है। तो ये जो रक्त स्राव है वो केवल थक्का जो जमाने वाले तत्व हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, सिर्फ उसी की कमी से नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में 3 और चीज़ें हैं। जैसे प्लेटलेट जो मैंने आपको बताया होगा, यदि आपने सुना होगा कि जो पत्थर मैंने रखा था वो पत्थर प्लेटलेट को मैंने इंगित किया था, तो प्लेटलेट की कमी से या तो संख्या में कमी हो या उसके फंक्शन यानी कार्य में कमी हो, उससे भी रक्त स्राव अधिक हो सकता है। या कभी कभी छोटे छोटे जो धमनियां हैं, कैपिलरी चैनल्स हैं, वो ज़्यादा फ्रेजाइल यानी कि ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो आपको डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी कमज़ोर है, ब्रेक हो सकता है, तो उसकी वजह से भी होती हैं, कैपिलरी फ्रेजिलिटी से भी।
2: जी, तो इनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है?
1: नहीं, आप उसको जैसे डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया है उनके फॉलोअप में रहें, और कोई ऐसी बात होगी तो ज़रूर डॉक्टर साहब उसका निदान करेंगे।
2: जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना शुभ नाम बताएं।
1: यस, मेरा नाम शगुफ्ता है।
0: जी शगुफ्ता जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं न्यू दिल्ली आरकेपुरम से बोल रही हूँ
0: जी, बताएं।
1: तो मेरा ये सवाल है, जैसे सर ने अभी बताया कि महिलाएं जो है वो कैरियर होती हैं, तो क्या उनके अंदर भी कोई ऐसा सिम्टम दिखता है इस बीमारी की जो
0: जी
2: नहीं? हाँ नहीं, बहुत अच्छा,
0: अच्छा
2: प्रश्न किया है शगुफ्ता जी आपने। और इसमें जो कैरियर होते हैं उनमें यूजुअली लक्षण बहुत ही ना के बराबर और कम होते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखेंगे कि कभी कभार ये महिलाओं या लड़कियों में भी हीमोफीलिया के लक्षण हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैंने भी बताया था कि दो एक्स क्रोमोसोम पे थका जमाने वाले तत्व यानी कि जीन हैं, उसमें एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है नेचर में कि उसमें से एक क्रोमोसोम जो एक्स का होता है वो इनएक्टिवेट होता है, यानी कि वो यूजुअली नॉन फंक्शन होता है। मान लिया जाए कि जो दो में से एक ऐसा है जो कैरी कर रहा है हीमोफीलिया वाला जीन और दूसरा जो नॉर्मल होना चाहिए था वो इनएक्टिव हो जाए, तो उस केस में फिर वो लक्षण हो सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मली है लक्षण महिलाओं में कम होते हैं। जैसे अब आप लक्षण की बात करें तो जैसे माहवारी आती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, या फिर मान लीजिए कि कोई किसी का सीजेरियन हुआ या प्रेगनेंसी के बाद की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ये लक्षण होते हैं। लेकिन अमूमन औरतें या लड़कियां इस बीमारी से कम ज़रूर इससे राहत है। और जैसे मैंने बताया एक बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा होता है, लेकिन हाँ लक्षण होते हैं तो यही जो कॉमन लक्षण है। और चाहे कोई नोज की ब्लीडिंग वगैरह हो या एपिस्टैक्सिस जिसको कहते हैं या माहवारी में ज़्यादा ये वाले लक्षण ही होते हैं। ज़्यादा कोई ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग अमूमन नहीं होता है महिलाओं में, जब तक कि जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्शन ऐसे हो।
0: तो इनके सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब आपने। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, जानवी जी मेरठ से लिख रही हैं कि मेरी उम्र 19 साल की है, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी करीब, इनको 7 सितंबर 2024 की बात ये बता रही हैं, और लिख रही हैं कि हाथ में क्या होता है कि जब ये कोई चीज उठाती हैं तो वो सुन है हाथ इनका और चीज़ गिर जाती है, क्या ये भी कहीं हीमोफीलिया के ही लक्षण हैं?
2: नहीं जानवी, ऐसा है, ये हीमोफीलिया के लक्षण इस तरह से नहीं हैं। आप इसको एक बार थोड़ा इवेलुएट करा लें, क्योंकि इसमें
0: एमसीबी जांच, ये लिख रहे हैं कि मैंने एमसीबी जांच भी कराई थी।
2: हाँ, उसका कुछ दिया है उन्होंने सीबीसी? मैं वही कहने वाला था,
0: कोई जांच का डिटेल तो नहीं दे रहे हैं।
2: एनसीबी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, हाँ हाँ, तो वो आप देख लें, उसमें मेरे समझ से कोई न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकता है, लेकिन हीमोफीलिया के वजह से रक्त स्राव के अलावा और भी लक्षण होते हैं, बट जिस तरह की समस्या ये बता रही हैं वो समस्या इसके अंदर नहीं आता है,
0: हीमोफीलिया की नहीं।
2: हाँ, लेकिन आप न्यूरोलॉजिस्ट से या फिर मेडिसिन से एक आप इसको करा लें दिखा करके, और कुछ जांचें करानी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से समस्या का समाधान होगा।
0: जी डॉक्टर श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि किस तरह से इन्होंने जैसे कि लिखा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो लोग चाहते हैं कि अगर डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो घर में भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया जाए कि वो समस्या निदान हो जाए उसका।
3: जी, अगर आपको पता है कि आप हीमोफीलिया के पेशेंट हैं और आपको एक ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में आप चल रहे हैं, मेडिसिन भी चल रही हैं, आपकी थेरेपीज भी चल रही हैं, तो अगर आपको बार बार इस तरह की शिकायत, जैसे कि इसके सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होंगे, आपको फिर से जोड़ में फिर से रक्त स्राव हो सकता है, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स फिर से आ सकते हैं, फिर से आपको दर्द सूजन वाली परेशानियाँ हो सकती हैं, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी श्रोतागण को कि जब कभी भी जोड़ में सूजन आए हीमोफीलिया की वजह से, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप उस पर गर्म सिकाई ना करें। आमतौर पर ये है कि आस पड़ोस वाले या घर वाले बोल देते हैं कि जोड़ में सूजन है, दर्द हो रहा है, चलो गर्म पानी से सिकाई कर लो, तो आपने इस चीज का बिल्कुल परहेज रखना है कि इस कंडीशन में स्पेसिफिकली हीमोफीलिया के मरीजों को गर्म सिकाई या कोई भी ऐसी, जो हम भी थेरेपीज करते हैं तो हम कोई भी हीट मोडालिटी नहीं यूज करते हैं, ठंडी सिकाई आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे क्रायोथेरेपीज है जिससे ट्रीटमेंट होता है। घर में बेस्ट यही होगा कि मरीज ठंडी बर्फ का पैक लगा सकते हैं जिसको कोल्ड पैक बोलते हैं, या ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं ताकि उनकी जो सूजन है वो कम हो जाए और अंदर खून का दौरा जो है वो उससे कंट्रोल रहता है। हीट जो है ये कंडीशन को बढ़ाएगा, तो ये चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ऐसे समय पे आप पे गर्म पानी की सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है।
0: जी, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है और श्रोताओं लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह की आपको अगर समस्या है तो आप अपने आप से ना उसका इलाज करें बल्कि डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। और आज हम हीमोफीलिया पर चर्चा कर रहे हैं, आगे बहुत सारी चर्चा होगी, फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, FM रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय जी और डॉक्टर श्वेता जी, जिनसे आज हम चर्चा

0: कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आप दोनों से हमें मिल रही है। और अब अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि हीमोफीलिया पर बहुत सारी बातें आपसे जानी हैं, लक्षण जाने हैं और कारण क्या होते हैं। अब जानना चाहूंगी कि बचाव क्या हो सकता है इसके लिए।
1: ये ऐसा होता है कि ये हीमोफीलिया में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बड़े शुरुआती दिनों से ही गंभीर हीमोफीलिया में रक्तस्राव बढ़ जाता है। तो यदि हम शुरू से ही हीमोफीलिया को, जिसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, उस पर ध्यान दें तो ये रक्तस्राव की मात्रा और संख्या दोनों में ही कमी लाई जा सकती है। तो मैं श्रोतागण को बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रोफाइलैक्सिस होता है तीन किस्म का होता है। इसको हम एक कहते हैं प्रारंभिक या प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। इसकी इसका ये लक्ष्य होता है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सकता है, 3 साल से पहले ही अमूमन, और एक ज्वाइंट, जो मान लीजिए नी ज्वाइंट है या एंकल है, एड़ी के पास है, उसमें ब्लीडिंग जो बड़े वाले किसी ज्वाइंट में हो उसमें हो, और सेकेंड ब्लीडिंग के पहले यदि हम शुरू कर दें, ये जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है उसका बच्चे को देना शुरू करें, तो इससे संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि हम उसमें ब्लीडिंग हो। दूसरी चीज़ है जिसको हम सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। उसका उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग तो हो गई दो या दो से ज़्यादा भी ज्वाइंट में, लेकिन उसमें ज्वाइंट के डैमेज होने का जो संभावना है, अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ है डैमेज, लेकिन उसमें इस किसी प्रकार का कोई आगे कोई डैमेज ना हो, इसके लिए सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। और लास्ट में जो टर्सियरी इसको कहते हैं, तृतीयक प्रोफाइलैक्सिस, उसमें ये होता है कि ज्वाइंट भी थोड़ा सा डैमेज हो गया हो लेकिन उसमें फर्दर कोई डैमेज इतनी कम से कम मात्रा में, उसको हम टर्सियरी प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से जब हम करें तो बच्चे को इससे फ़ायदा ये होता है कि आगे कोई ब्लीडिंग होती नहीं, या होती है तो ज्वाइंट बचा होता है, ये इसका फायदा है जी।
0: डॉक्टर साहब, ये बात भी सुनने में आती है कि अगर लगातार चिकित्सा चल रही है, कंटिन्यूसली अगर उसको चिकित्सा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आके आगे चलकर ये प्रभावी नहीं भी होती है, इसकी क्या वजह है?
1: इसके पहले अनुराधा जी, मैं एक छोटा सा श्रोतागण को थोड़ा बताना चाहूंगा, जो चिकित्सा है वो उसमें हम ऐसा करते हैं, जब उस पर हम आएंगे इसके बाद वाले इसमें, कि कैसे हम उसमें चिकित्सा कर रहे हैं और प्रभाव कम हो रहा है। पहले तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9, हम इसको डोज को कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद यूजुअली 2 पर वीक दिया जाता है फैक्टर 8 वाले में, और एक बार से काम हो जाता है इनके फैक्टर 9 वाले, यानी कि हीमोफीलिया बी में। इसकी वजह है, अब ये आप कह सकते हैं ए और बी में अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि ए में जो इनका हाफ लाइफ है फैक्टर 8 का वो 8 से 12 घंटे है, और इनका जो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि किसी भी थक्का जमाने वाले तत्व का प्रभाव आधा कितने समय में हो रहा है, यानी कि जब वो 8 घंटे में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा वो। और यदि फैक्टर 9 का प्रभाव 18 से 24 घंटे में कम हो रहा है तो कम संख्या में लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है जो इसका इलाज किया जाता है, एक तो बच्चे हैं और ऊपर से हमें इसमें आई भी देना पड़ता है, यानी कि नसों में देना पड़ता है, और बच्चे के लिए बड़ा पेनफुल होता है
0: जी।
1: तो इसीलिए ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखें कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा इलाज में जो है, अब नए प्रकार के जो आ रहे हैं फैक्टर 8 रिकॉम्बिनेंट वाले, उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि उसमें हाफ लाइफ, हमने इसको हम एक्सटेंडेड हाफ लाइफ कहते हैं, EHL टाइप के जो फैक्टर होते हैं उसमें जो हम देते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स कम देना पड़ रहा है पर वीक के हिसाब से, इससे बच्चों को सुविधा हो रही है, और बल्कि नए वाले में तो और भी सुविधा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि फैक्टर 8 फैक्टर 9 किसी को दिया जा रहा है
0: जी,
1: लेकिन उसका प्रभाव देखा जा रहा है कि कम हो रहा है 4-6 महीने या 2-4 साल के बाद। तो उसकी वजह ये होती है कि श्रोतागण, आपने सुना होगा कि जब हम कोई एंटीजन आता है तो हम शरीर में एंटीबॉडी बनता है, तो उसी प्रकार से फैक्टर 8 एक एंटीजन की तरह काम करता है, और वो एंटीजन जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो एक एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, और वो एंटीबॉडी फैक्टर 8 के प्रभाव को, जो थक्का जमाने वाला फैक्टर है जिसको दिया जा रहा है बच्चे को, उसका प्रभाव कम करता जाएगा। इसी को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो ये जो इनहिबिटर है उसकी वजह से, जो आपने सवाल पूछा है वो मैं श्रोतागण को इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये वजह है कि कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों में भी कुछ लोगों में ये देखा गया है कि वो उसका प्रभाव कम है। उसको पता लगाने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, और आम भाषा में मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी को इलाज कर रहे थे और उसमें खून का स्राव बंद हो गया था, लेकिन अचानक देखा गया खून का स्राव अब थोड़ा सा नहीं रुक रहा है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ नए जगह में खून का स्राव शुरू हो गया, तो ये एक संभावना है कि आपके जो इलाज चल रहे हैं वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसको कैसे रोका जाए, ये आपसे जरूर जानेंगे, कैसे इस तरीके को रोका जाए?
1: हाँ, ये एक बहुत

0: बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है कि अब जब सवाल आया है कि तब ऐसा करें क्या, इनहिबिटर आ गया तो क्या अब इलाज में कोई परेशानी आ गई? कोई परेशानी नहीं है उसके लिए। अब हमारे पास नए तरीके के दवाएं हैं और उन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको ये समझाऊं कि आप ये मान के चलें जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक बाई तरफ के पलड़े में मान लीजिए फैक्टर एट की कमी है या नाइन की कमी है, तो जिसका उसके वजह से क्या हो गया कि दूसरा पलड़ा जो है, एक पलड़ा जो है फैक्टर एट और नाइन थक्का जमा रहा है,
1: जी
0: इसको आप ऐसे समझें श्रोतागण, और दूसरा जो पलड़ा है वो थक्के को रोकना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले पाइप के उदाहरण में, तो जो मान लीजिए थक्का को रोक रहा है, एक थक्का जमा रहा है, थक्का जमाने वाला तत्व तो कम हो गया फैक्टर एट नाइन, तो दो तरीके हैं, या तो हम फैक्टर एट या नाइन को दें बाहर से जो हम दे रहे थे अभी तक लेकिन बन गया इनहिबिटर, तो अब करें क्या? तो उसका एक तरीका ये होता है कि उसको हम लोग कहते हैं कि इसको हम बाईपास कर देते हैं, मतलब फैक्टर एट की जगह पे कोई ऐसी ऐसा तत्व हम दें जो कि बगैर फैक्टर एट फैक्टर नाइन के भी वो जा करके थक्का जमाने की प्रक्रिया में सहायक हो जाए। तो ये जो बाईपासिंग एजेंट हैं कुछ इस तरह के होते हैं, उनको हम लोग करते हैं इस्तेमाल। दूसरा ये है कि इनहिबिटर्स के केस में बहुत सारी नई दवाएं आ गई हैं, एमीसुजुमैब है, कॉन्सुजुमैब है, तो उनका जो तरीका होता है वो मैं आगे फिर से आम भाषा में ही बताऊंगा कि मैंने बताया आपको कि दूसरा पलड़ा, तो दूसरा पलड़ा काम क्या था, जो मैंने बताया कि वो थक्के को कम करने का काम कर रहा है। मान लीजिए इस जो थक्के को कम करने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर कहलाता है या एंटीथ्रोम्बिन है, इनको हम यदि कम कर दें, तो एक तरह से जो तराजू का पलड़ा जो बाईं तरफ की वजह से थोड़ा सा ऊपर की चला गया था, और तो दाईं तरफ से हम बैलेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर एट और फैक्टर नाइन को दे करके भी ठीक किया जा सकता है, उसको हम बाईपास करके भी ठीक कर सकते हैं, या उसके जो विपरीत दिशा वाले जो पदार्थ हैं जो उसको कंट्रोल करने हैं, उसको हम बदलाव ला करके भी हम इसको इनहिबिटर वाले कंडीशन को ठीक कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैसेज आया हुआ है हरियाणा से रामधारी अवाना जी का, लिख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द मेन रीजन ऑफ हीमोफीलिया। मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ी देर से रेडियो सुनना शुरू किया है। वॉट आर द प्रिकॉशंस इफ वी अफेक्टेड द डिजीज, तो ये जानना चाहते हैं।
0: वैसे तो नहीं, ठीक है, इनका सवाल है, हमें जवाब देना ही है क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे हमने शुरू में इसकी बात करी थी, मैं इसको फिर से इसके
1: शॉर्ट में, हाँ,
0: की
1: संक्षिप्त
0: पॉइंट्स की
1: में
0: पॉइंट्स
1: जी।
0: बता देता हूँ। रामधारी जी, इसमें दो तत्व होते हैं, एक माता एक पिता से आता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम। आपने शायद यही पूछा है कि होता कैसे है, तो इसमें जो तत्व हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाले जो फैक्टर बनाने वाले होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में दो हैं जीन जो ये तत्व बनाते हैं, और इसमें यदि एक की कमी हो गई तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पुरुषों में एक भी कम हो गया, चूंकि पुरुषों का जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई होता है, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ये तो बात ये हो गई, और उनका दूसरा सवाल का हिस्सा क्या था, कैसे उसको
1: कैसे प्रिकॉशन हो
0: प्रिकॉशन
1: सकता
0: ओके
1: है
0: हाँ,
1: जी।
0: तो इसमें देखिए ऐसा है कि जब भी पता लगे कि हीमोफीलिया है तो आप तीन चार, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कभी भी कोई भी प्रोसीजर हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई डेंटल ही एक्सट्रैक्शन कराना है, निकालना है दांत, कोई भी प्रोसीजर करना है, तो उसके पहले एक विशेषज्ञ की राय लेनी जरूरी है। छोटी भी चोट है उसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, जैसे सरकमसीजन वगैरह है, वो सबको भी ध्यान में रखना है कि ठीक से करें और प्रिकॉशन के साथ करें। छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर ना करें, ओरल हाइजीन को ठीक रखना होगा। और कभी भी ऐसे व्यक्ति जिनको हीमोफीलिया है, हम हमेशा कहते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट, कहने का मतलब ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें एक दूसरे के साथ टच ना हो, वैसे स्पोर्ट्स को खेलें, जैसे स्विमिंग करें, तैर सकते हैं वो, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, ये प्रिकॉशन लेना जरूरी होगा बच्चे को, क्योंकि कोई भी ऐसा जो खेल है जैसे कबड्डी है जिसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, क्रिकेट है, उसमें थोड़ा सा उसको अवॉइड करें।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि हीमोफीलिया से ग्रस्त लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए, कुछ खास सावधानियां खान पान में?
0: नहीं, ऐसा कोई इस बीमारी का खाने से किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा नहीं है,
1: लेना हो?
0: बल्कि एक चीज़ ज़रूर है कि आहार तो संतुलित सबको लेना है, इनको भी लेना चाहिए, और अमूमन चूंकि ब्लड लॉस होता है तो उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए और रिप्लेनिश ना हो, तो आयरन की कमी हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपसे मिल रही है, आप दोनों विशेषज्ञों से। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में और दो विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर विजय जी हैं और डॉक्टर श्वेता जी। श्वेता जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा सवाल ये है कि हीमोफीलिया से ग्रस्त कोई है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी?
1: हीमोफीलिया अगर किसी भी मरीज को है और अगर उसके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, पहले भी मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह की हिदायतें हमें लेनी है घर में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो अगर सपोज करें नी में किसी को हीमोफीलिया का असर आ रहा है, उसको दर्द सूजन की परेशानी है, तो जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि बिना मूवमेंट के मांसपेशियों को कसाव देना, इस तरह की एक्सरसाइज मरीज को बताई जाती है। मरीज ये एक्सरसाइज सीख सकता है किसी भी नज़दीक के अस्पताल में या क्लिनिक पे, सेंटर पे जाके। फिर उस तरह की एक्सरसाइजेज आप घर में उसको करें। एक्सरसाइज की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग लगभग 10 से 15 कॉन्ट्रैक्शन दिन में 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो। इसमें हमें ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलना है, क्योंकि एक इसका की यही है कि स्लो और स्टेडी, मतलब जितना आप ठहराव के साथ

0: आराम के साथ अपने जोड़ की मूवमेंट करें, उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। क्योंकि ज़्यादा करने से अंदर की जो मांसपेशियां हैं या जो जॉइंट है उनके ऊपर स्ट्रेस आता है और परेशानी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ साथ जो एक्सरसाइज की हम जैसे बात कर रहे हैं कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, और दूसरा ध्यान में रखना है कि जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप घुटनों की, कोहनी की या एंकल की, टखनों की कोई भी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पेन फ्री रेंज में, यानी कि दर्द के बिना वाले मूवमेंट के साथ होनी चाहिए। आमतौर पर ये थ्योरी होती है, हम कहते हैं ना कि कहीं जकड़न आ गई है या कहीं अकड़न आ गई है तो नो पेन नो गेन, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर नो गेन विद पेन, अगर आपका पेन हो रहा है दैट मीन्स आप कंडीशन को खराब कर रहे हैं, आप उससे गेन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पेन फ्री मूवमेंट करना है, बहुत ही स्लो और स्टेडी करना है, आराम आराम से करना है, और साथ साथ जैसे बताया कि बर्फ की सिकाई जरूर करनी है।
1: अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए
0: जी
1: तो कैसे क्योर होगा?
0: कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे मरीजों में देखा गया है उसमें है कि जैसे हमने जॉइंट डैमेज की, कि जोड़ के डैमेज की हमने बात करी कि, तो जॉइंट डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है। जो आर्थराइटिक चेंजेस हैं, जो गठिये की परेशानी है, ऐसे मरीजों में बहुत जल्दी आ जाती है। बोन के अंदर जो घनित्व है, कैल्शियम की जो डेंसिटी है बोन की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरह की परेशानियाँ, कमजोरी, थकान भी ऐसे मरीज जल्दी महसूस करने लगते हैं। और कई बार होता है कि क्योंकि सूजन है, दर्द है, मरीज उस जोड़ को नहीं चला रहा है, काफी समय तक एक पोजीशन में रखने की वजह से भी वहां पर जकड़न अकड़न इतनी आ जाती है कि वो धीरे धीरे एक डिफॉर्मिटी का रूप ले लेती है और आगे जाके बढ़ के वो एक कंट्रैक्चर में भी डेवलप कर सकती है, यानी कि वो आप उसको नहीं ठीक कर सकते, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो परहेज यही रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो, और अगर किसी वजह से मरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं तो हम सीरियल स्प्लिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरह का स्प्लिंट एक दिया जाता है मरीज को जो धीरे धीरे एंगल्ड होता है, यानी कि अगर हमारा घुटना जो है वो मुड़ा हुआ है और सीधा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो हम उसको एक एंगल पे स्प्लिंट देंगे, कुछ समय उस पोजीशन में रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसका रेंज हम बढ़ाते हैं ताकि घुटना सीधा हो सके, ताकि जोड़ पे असर भी ना आए, प्रेशर भी ना आए, और मरीज जो है अपना नॉर्मल मूवमेंट फिर से गेन कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम या रोल है कि मरीज एक नॉर्मल लाइफ जिए, अच्छी हेल्दी लाइफ जिए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करे।
1: डॉक्टर विजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास से ग्रसित हो जाते हैं, वैसे ही इस बीमारी को अगर माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं अभिशाप है, तो क्या ये सच है या कोई वैज्ञानिक कारण है?
2: नहीं नहीं, एकदम ये मैं सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि इसका कोई किसी अभिशाप से, किसी पूर्व जन्म के पाप या कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से भ्रांति है। यह एक बीमारी है जो आनुवंशिकता के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें आनुवंशिक कारण है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले भी, और जिसको यदि हम सही ढंग से इसकी डायग्नोसिस जल्दी कर लें और उस पर हम कार्य करें कि इसमें प्रोफाइलेक्सिस दें और मैनेजमेंट सही ढंग से करें, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और मरीज आसानी से क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, जिसमें जैसे मैंने बताया थोड़े से प्रिकॉशन लेके नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को कर सकता है, कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकता है स्पोर्ट्स वाले को, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इसका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो कृपया इस बात को दिमाग से निकाल दें, चाहे किसी भी परिवार में हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसा इसी को क्यों हुआ, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ, तो उसके कारण भी मैंने बता दिए हैं कि वजह जो है वो एक्स लिंक्ड होने की वजह से होता है, इसीलिए लड़कों में होता है, लड़कियों में ये कम होता है, तो ये इसका कोई ऐसा कारण नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है?
2: देखिए, ऐसा है कि जड़ से खत्म करने वाली जो बात है उस पर कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जीन थेरेपी, ये दरअसल एक जीन की बीमारी है, तो इस पे ट्रायल चल रहे हैं, जीन थेरेपी पे भी काम हो रहा है, लेकिन दरअसल अभी ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे जो अभी इलाज जो हो रहा है और जितने भी ये, जैसे मैं एक चीज विषय पर और बोलूँगा, प्रोफाइलेक्सिस के अलावा ऑन डिमांड ट्रीटमेंट जैसे हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आरएमएल हॉस्पिटल में
1: जी।
2: तो इसमें कोई परेशानी नहीं है यदि मरीज सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करे और जैसे उसको बताया जा रहा है वो करता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। रेगुलर बेसिस पे उसको टच में रहना है। जीन थेरेपी एक पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन अब उस पर काम थोड़ा होना बाकी है
1: जी। डॉक्टर साहब, बाकी सवाल एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद
2: जी।

0: डॉक्टर साहब, लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हीमोफीलिया से बचा जाए। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, संजय जोशी जी पुणे से लिख रहे हैं कि माय फ्रस्टेड ऑपरेशन परफॉर्म्ड फ्यू डेज आफ्टर ब्लड क्लॉट्स डेवलप्ड इन ब्लैडर, यूरिन ब्लॉक्ड 7 आवर्स, डॉक्टर सेज ड्यू टू ब्लड थिनर टेबलेट्स डेवलपिंग क्लॉट्स, व्हाट रीजन?
1: ये तो दरअसल क्या है कि जितने भी, जैसे मैंने बताया था, क्लॉट बनने के लिए जैसे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसी प्रकार से प्लेटलेट भी उतने ही ज़रूरी हैं। और ये एंटी प्लेटलेट्स जितने भी दवाएं हैं या ऐसी दवाएं जो इसी पूरे क्लॉटिंग सिस्टम पे प्रभाव डालती हैं, उसकी वजह से भी माइल्ड ब्लीडिंग या क्लॉट्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें इसका हीमोफीलिया से एज सच कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कोविड वाले के समय में हुआ था कि कई बारी हमें दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, कि एक तरफ तो क्लॉटिंग फैक्टर भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ एंटी क्लॉटिंग, फॉर एग्जांपल लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन भी। तो वो हम किसी एक्सपर्ट के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे हीमोफीलिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हुआ है उसको आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क में रहें और उसका वो सही उपाय बताएंगे।
0: जी डॉक्टर श्वेता जी, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: इस विषय में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जैसे आपने पूछा कि एक तरीका अभिशाप कई बार माँ बाप अपने बच्चे के लिए समझते हैं, तो सही समय पर इसकी जांच कराएं। अगर किसी भी तरह के लक्षण बचपन से ही नज़र आ रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो रहा है, आप अपने बच्चे को लेके जाएं, इलाज कराएं। सही समय पर इसका डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो एक सही थेरेपी की तरफ आप जाएंगे। अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि 1960 में जहाँ इस कंडीशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो 11 साल के करीब ही थी, और अब देखें कि भारतवर्ष में बढ़ते बढ़ते, क्योंकि इतनी थेरेपीज़ होलिस्टिक अप्रोचेज आ गई हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, हमारी फिजियोथेरेपी है, और भी बहुत सारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेज आ गई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर हो गई है। ऐसा मरीज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ, जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से आमतौर पर जैसे हम लोग जी रहे हैं इस तरीके से जी पा रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: एकदम सही, जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया है, इसमें लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम एक्चुअली जोर देते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं फिर से सारे श्रोतागण को बताना चाहूँगा कि यह कोई अभिशाप नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में या गैर सरकारी अस्पतालों में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। NGOs अभी हैं काफ़ी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और हमें इसकी सबसे पहले, और यही थीम भी हमारे इस आज के कार्यक्रम का, कि डायग्नोसिस सबसे पहले होना जरूरी है, और डायग्नोसिस होने के बाद इस पे हमें सही काम करने की ज़रूरत है। और अर्ली फेज से यदि हम प्रोफाइलेक्सिस लेते रहें, मैनेजमेंट सही रहे, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, तो और जितने भी प्रिकॉशंस बताए हैं सारे चिकित्सकों ने, खास करके कि नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे मैंने पहले बताया, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से पूरी आप क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर ढंग से एडल्ट लाइफ जी सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
0: जी बहुत ही सुंदर। और श्रोताओं,

0: लगता है कि अब कोई भी कोर कसर बाकी नहीं है। हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बिल्कुल सारी सटीक जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस कॉल में जुड़ सकते हैं। हम निरंतर हर रोज हमारा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम होता है और आपकी हर समस्या का समाधान लेकर हम हाजिर होते हैं। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दोनों विशेषज्ञ जो थे वो थे डॉक्टर विजय कुमार जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड हीमोटोलॉजी यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ABVIM एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। आप दोनों विशेषज्ञों ने इतनी खूबसूरत और इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, जितना अच्छा आपने इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया, और सारे श्रोतागण को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, नमस्कार।
0: धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको हम तीनों की ओर से नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम

जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो सिटी ऑन की 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं तुम्हारी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम चल रहा है जी, लव यू जिंदगी। बिल्कुल सही गल है, थक के ना रुकने वाला जिहड़ा हुंदा है ना वो बाजीगर हुंदा है, ते जिहड़ा मुश्किल आके रुक जांदा है या झुक जांदा है वो सिकंदर कहीं कदे भी नहीं कहलाउंदा। सिकंदर उही हुंदा है जिहदी जिंदगी दे विच जिन्नियां मर्जियां मुश्किलां आ जाण, जिन्नियां मर्जियां रुकावटां आ जाण, वो बस यही कहिंदा है कि नहीं इत्थे नहीं रुकना उत्थे नहीं रुकना, मैं जिथे रुकना है ना वो सिर्फ मेरी मंजिल है। मैनू पता है तुसी किदा दा महसूस कर रहे हो, तुसी कह रहे हो कि ये सिर्फ गल्लां ने ते गल्लां मारनियां ते गल्लां करनियां बहुत आसान है, जो बंदा करदा है ना सिर्फ उहनू पता हुंदा है कि उहदे उत्ते की बीत रही है। पर सच दसां गल्लां करनियां भी तां ही सौखियां ने जदों बंदे ये फील करदा होवे कि हाँ अगला कर सकदा है। ते मैनू पता है कि मेरे जिहड़े दोस्त ने उह अपनी जिंदगी दे विच अगे भी वध सकदे ने, किसे नू जेकर राह दिखानी है उह राह भी दिखा सकदे ने, गलत दा साथ भी नहीं देणगे ते हमेशा गलत मूरे जिहड़ा है खड़े भी होणगे, मैनू इन्हां दा यकीन हैगा है दोस्तां ते।

सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद

जी धूम मचाते निकलो निकलो आज जिधर से, जिधर से क्या, बॉलीवुड में जब एन इवनिंग इन पेरिस के लिए जब बाहर गए हमारे बॉलीवुड के कलाकार, सो जिवें कि मैं क्या कि बहुत सारे लोगों नूं एक राह लभ गया, उस तो बाद बहुत सारिया फिल्म्स बाहर शूट हुई। पर मैं इस प्रोग्राम दे विच कोशिश करांगा इस नूं तीन तो चार फेसिस दे विच वंडन दा, क्योंकि पहली बार जिवें आपां गल कीती 1960 तो लैके 1970 दे विच एक पूरा डेकेड, एक पूरा दहाका जिहदे विच बहुत सारिया होर भी मूवी सीगियां जिहड़ियां बाहर शूट हुई, पर सब तो ज़्यादा हाईलाइट जिहड़ी है वह होंदी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जो दोस्तों एक फिल्म नहीं सी, एक ना वाकई एक पूरी दी पूरी जनरेशन नूं एक सोच बदलने वाली कहानी कि किवें अपने जिहड़े वैसे बहुत सारे लोगों नूं उत्थों ही थोड़ा जिहा कह लो कि सबक कह लो या सीखने नूं मिलिया कि किवें साडे जिहड़े दोस्त ने बाहर पढ़ाई लई जा रहे ने बाहर, मतलब नो डाउट जाते होणगे, बहुत सारे लोग पहलां भी जाते होणगे, पर बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर इन्हां नूं हुण मिलिया कि अच्छा जाया जा सकता है, अच्छा पढ़िया जा सकता है, अच्छा सिर्फ देश होर देश भी घूमे जा सकते हैं। सो आ जड़ियाँ चीज़ा जड़ियाँ सीगियाँ वो एक एक्सपोजर जड़ा है फिल्मों के जरिए आम घर तक पहुँचिया, तो बॉलीवुड के जरिए बहुत सारे लोगों एक वक्री देख एक वक्री चीज़ जी पता लगी। सो फिल्म जी है बहुत बहुत ज़्यादा हिट रही, 1995 फिल्म आई तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट 31 साल जोड़े ने फिल्म हो चुके हैं, 31 हो चुके हैं, हाँ 31 साल जिहड़े ने वह हो चुके ने। सो 31 सालों के जिहड़ी चीज़ा ने वह बिल्कुल नहीं बदलियां, लोग हजे भी उत्थे जिवें पहले भी कहा कि जाते हैं एंड सेम चीज़ा का नोस्टैलजिया फील जिहड़ा है वह उत्थे लैंदे ने। मैं अगे जाके दसांगा कि होर कि फिल्मां ने जिहड़ियां बाहर शूट हुई, जिवें एक होर बड़ी ज़्यादा फेमस फिल्म अक्षय कुमार जी की कटरीना कैफ ऋषि कपूर जिसका नाम है नमस्ते लंडन, वैसे मोस्टली सारी फिल्मां जरूरी नहीं कि सारी सारी बाहर शूट हुई, उनका काफ़ी सारा हिस्सा बाहर एंड काफ़ी सारा हिस्सा इंडिया दे विच शूट हुंदा, तो उसनू नाल जोड़ के स्टोरी जिहड़ी है वह बिल्डअप की जाती है।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। शाम दे रात दे 8:03 ते 23 सैकेंड हो चुके हैं। एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जी मसाला मिक्स, यानी कि गल्लां आपां करांगे मिक्स। कुछ गल्लां स्पोर्ट्स दी हो सकदियां ने, कुछ गल्लां फिल्मां दियां, कुछ गल्लां वैसे आम लोकां दियां, फिर साइंस दियां, ये वो सारियां गल्लां करांगे। सब तो पहला गल मैं कहना क्रिकेट की ही कर लें, क्योंकि क्रिकेट के कल फिर पंजाब जी हार गई। हालांकि 20वें ओवर तक मैच गया एंड काफ़ी लग रहा शायद इतों वापस मुड़ जाएगा, पर जी टी यानी कि गुजरात टाइटन्स जोड़े ने चंगा टाइट होकर उन्होंने बॉलिंग भी की, बैटिंग भी उन्होंने सोहनी की, जिसका नतीजा ही निकलिया कि बई पंजाब जी दूसरा मैच हूँ तक का दूसरा मैच हार चुकी है। हूँ तक 9 मैच हो चुके हैं, जिन्होंने एक ड्रॉ निकलिया, 2 हारी है, यानी कि 9 विचों 6 जीती है, 1 ड्रॉ है, एंड हजे भी पहले पायदान पहली पोजिशन से बिल्कुल तगड़ी होकर खड़ी है। सो लैट सी अगों जाके की बनता है। बट अज का मैच बड़ा ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट है, मतलब इदा है कि दोवों लिए तो इंपोर्टेंट है, बट हाँ दोनों टीम बाहर हो चुकिया ने। मैं गल कर रहा लखनऊ की एंड मुंबई की, दोनों ही टीम 9वें 10वें नंबर पर है, पर हुण कोशिश देगी कि कौन जाते जाते बस अपनी इज्जत जड़ा है उसनू सवार दे, क्योंकि इस मैच दे जितन दे नाल दोनों टीम कोई भी टॉप 4 दे विच क्वालीफाई तो बिल्कुल भी नहीं करनगियां। बट बस इन्ना हो जाएगा कि बई उन्होंने जाते जाते बस स्कोर जड़ा है, जिहड़े प्लेयर जिहड़े बड़े ज़्यादा पैसे उन्होंने मिले ने बस उन्होंने जस्टिफाई करनगे कि नहीं करनगे। फिलहाल मैं दस दवां कि हुणे हुणे

जी हाँ, आज मिल चुका है आपको सुनहरी मौका। आपको हमारा नंबर डायल करना है और मैसेज भेज कर मारना है आपको चौका। जी हाँ, हमारा नंबर है 9855101027। चलो विन जी, हूँ होर केड़े दोस्त ने सानू मैसेज भेजे ते ओके। सो प्रे नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। फिल्म हीरा गीत मैं तुझसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने। वेरी बैड वेरी बैड। गांव नाईवाला, जिला हनुमान, राजस्थान से। वेद में डाल का मिड्डा। ठीक है जी, नमस्कार जी, वेलकम टू दी प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैसेज भेजा है हमें सिरसा हरियाणा से हिमांशु सेठी और शेफी सेठी और नैन्सी जी ने। लिखा है गीत चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, आवाज़ लता मंगेशकर, फिल्म दो चोर। ठीक है जी, अगला मैसेज मैं कहता हूँ ये वाला जो मैसेज था दो चोर वाला, ये तो पहली बार है आया इस फिल्म का ये वाला गीत। तो ये हमने ढूंढ लिया है, गाने के बोल थे चाहे रहे दूर। ठीक है जी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं और आगे हमें फरमाइश भेजी है प्रस्तुतकर्ता को पार भरी नमस्कार। गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीतर गीता, पसंद का कोई भी गीत सुना दो। खुश रहो आबाद रहो। शुक्रिया जी। अगला मैसेज आया जी, नमस्कार, किसी भी सॉन्ग में शामिल करें हमें, अपने साथ बने हुए हैं लाइव और हमारा मैसेज शामिल करना मत भूलिएगा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित। और ये सेम मैसेज उन्होंने कॉपी पेस्ट करके दो बार भेज दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू। अगला मैसेज गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। और अगला मैसेज गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब तो। स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर ते शुभदीप ते। ठीक है जी, लो जी फिलहाल इंजॉय करते हैं इस मूवी जरा दो चोर मूवी का गीत न। गीत तो बाद जो होर दोस्तों फरमाइश भेज रहे हैं उन्होंने फरमाइश न लवेंगे रेडियो थे गाने सुना। तो नंबर एक बार फिर 98 55 10 10 27। एंड जोड़े दोस्त सिर्फ सुन रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप हमें मैसेज भेजिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।

अरे हमारे जो अपने हैं वो हमारे पास ही रहेंगे, वैसे चाहे बड़ी बड़ी दूर रहते होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर, कहीं भी हमारे तो दिल के बिल्कुल पास और अंदर रहते हैं। और हम किराया भी नहीं लेते, क्योंकि की किराया जो किराया लेना है इनसे, बस गाने बजाने हम के लिए और प्यार देना और प्यार लेना है। ठीक है जी, प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हो जी, जिसका नाम है जी दिल चाहता है। और दिल चाहता है में आगे बढ़ेंगे, आगे कितना बढ़े हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अगे है जी, मैसे जी आर पोल थे पूरा पोल परिवार सोनू मैसे भेज रहे जलंधर तो, फिल्म रानी रूमती का गीत लूट के आजे मेरे लूट के आजा मेरे मीट। ओके रानी रूपमती, ये जब बात हुई ना भाई, जो फरमाइश वाली ये मिल गया गाना और आ लौट के आजा मेरे मीत। ठीक है जी, ये गाना लगेगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं पोल साहब। आगे चलते हैं, आदरणीय पसारती नमस्कार, आप हमारी फरमाइश किसी भी चीज़ के साथ शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब रही मेहरा जहाँ आज़ाद नगर लक्ष्य हरिद्वार से। ठीक है जी, थैंक यू। और फिल्म दिल चाहता है आर जी मोहित रुबल सर जी, प्यार भरी नमस्कार। डर फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। जादू तेरी नजर, किरण नरुला, ग्रीन पार्क, कपूतला। प्लीज जी, थैंक यू, आज जरूर सॉन्ग सुनाए। ओके सप्रे नमस्कार, फिल्म दिल है बेताब और ये पसंद करता है जतरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा। ओके जी, ओके। अगले मैसेज, नमस्कार जी, फिल्म कद्दर का सिकंदर, गीत दिल तो दिल का है, मजनू का टिल्ला, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ठीक है जी, अगले मैसेज, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, बत्ता परिवार, मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। फिल्म यस बोज और गीत का नाम, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। अगले मैसेज, ए जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो जरा ठहरो, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रामनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिब बजाज और बिट्टा बजाज। ठीक है जी, अब इनकी साहब की सांझी फरमाइश जो है वो भी प्ले कर देते हैं, जो कि आई है हमें रानी रूपमती मूवी से। आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी यार, लौट के आजा मेरे मीत, जो बहुत बहुत दिनों से मैसेज नहीं कर रहे हैं वो आज कर लें हमें। लो जी, अगला मैसेज आया है। जी जी जी जी जी जी ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजे यादव देशमुख और वायाल परिवार, और थैंक यू सो मच और हमें इतनी दूर से पैगाम भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज है। दिल चाहता है सौप्रेम नमस्कार, आप कैसे हैं? मूवी जन्म जन्म के फेरे जरा सामने तो आ चल गया, चुप चुप चलने में क्या राज है। सिंगर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जुगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और ऋषा गोस्वामी, माई रेडियो माई लाइफ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज करणवीर हाउस, गुरु गोबिंद सिंह नगर, पुचो कैंचिया, बठिंडा, जोड़ा परिवार वालों सत श्रीकाल जी। परम प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, किसी भी गीत में शामिल किया जाए जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तुहाडा सारिया का। अगला मैसेज चक चौदह PSB जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, कुलदीप सिंह, राजवीर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज, बिरकलाला वैली दे वालों नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज राम राम जी, कोई भी गीत, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज सत श्रीकाल, सुखदेव सिंह, दरिंदर खो, सनीमुनी काका, बिट्टू लाडी, मास्टर मोहन, जगनैने नगर तो, फिल्म स्वर्ग गीत है मेरे दोस्त, लौट के आ जा। मोहित रुबो जी नमस्ते, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगला मैसेज एनी सॉन्ग, पहाड़गंज मुल्तानी ठंडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथल हरियाणा से, मधु नायक। ठीक है जी, सब प्रेम नमस्ते कबूल करें जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कोई भी गीत में शामिल करें, चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, आदर्शपाल जोसन और वैनकूवर कनाडा से, रोबिन। फिल्म मेरे जीवन साथी और मेरे दिल के चैन, संदीप मकड़। फिल्म मेरे जीवन साथी और मेरे दिल के चैन, संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भारत कमल, सानी पिंगा वाला चौंक, गुराया। ठीक है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन है मेरे। ओके जी, मिल जाएगा गाना मुझे कि नहीं मिलेगा, ये भी तो हो। मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, मिल गया जी। जी हाँ, अगर आपके भी दिल को चैन नहीं आ रहा, आप भी चाहते हैं गाने सुनना अपनी फरमाइश के, छोड़िए इंटरनेट का साधन, अपने प्लेटफॉर्म से मत सुनिए, अपने नाम के साथ सुनिए, रेडियो पर सुनिए, लिख भेजिए हमें अपना नाम और गाने की फरमाइश।

जी हाँ, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम दिल चाहता है में। अब किसी का दिल क्या चाहता है, आइए जानते हैं। लिखा है, दिल चाहता है पिंड मुरिया वाली जिला फाजिल का प्यार परी नमस्कार विनोद काठपाल, प्रवीण हनी दीक्षा जन्नत गुरलीन काठपाल। फिल्म राणो का कोई भी पंजाबी गीत, लो जी राणो की फरमाइश की है तो राणो नू किवें राज कर दी अपना। राणो राणो तो गाना लभ नहीं मैनू, ओके क्या पता डबल ही ना पाया हो राणो दे विच। जी हाँ, राणो का गाना ही एक साढ़े को लिखा है, यारो कुड़ी कबूतर ये लगेगा गाना भाई जान। ठीक है जी, अगे पहुँचते हैं। सो प्रेम नमस्ते, किसी भी गीत में सामने करें नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका सो रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम दिल चाहता है नोहो राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज हिमांशु पवन। फिल्म खतरों के खिलाड़ी की तुमसे बिना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। ठीक है जी, अगला गाना अगला मैसेज, फिल्म मेला बोल गौरी के हाथ में चांदी का छल्ला। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश। अगला मैसेज, कृष्णा पाक दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पंख रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना अरजिंदर सिंह ओबराय। फिल्म अपना देश गायक ये और गीत गजरा लगा के गजरा। अगला मैसेज जी, जयकाल महाकाल गुड बाय प्रवीण एमपी। ठीक है जी, अगला मैसेज, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता सॉन्ग तुम पर हम हैं अटके यारा दिल बीमारे झटके। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या और उन्होंने भेजे हैं चार गाने और क्यों पता नहीं। प्रोग्राम दिल चाहता है बंसीलाल संधू पिंड तेजा मोड़ी अंबाला हरियाणा से मोहन प्यारे बूटा मंडी जलंधर तो सत श्रीकाल। ठीक है जी, अगला कोर मैसेज, रिस्पेक्टेड आर जे साहब एनी सॉन्ग मैसेज हम भी सुन रहे हैं। सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम अदीब गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। ठीक है जी, ये आगे बढ़ते हैं और राणो मूवी का गाना सुनते हैं।

ਜੀ ਕਰਫੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੋਹਿਤ ਰੁਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 9855101027। अगला मैसेज आया जी, आरजे जी आपको आदाब नमस्कार, एनी सॉन्ग धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू, शुक्रिया जी। ठीक है जी, नमस्कार जी, आपकी आवाज़ में आपकी आवाज़ दमदार है, गुड वॉइस। गीत के बोल हैं, मेरे दिल ने तड़प के जब तेरा नाम पुकारा, परीक्षित रेहान एकता गुड्डू अनीता विकास कश्यप बॉबी राजपूत कस्तूरपा नगर जलंधर कैंट FM रेनबो दिल से दिल तक। अब ये जो गाना आपने भेजा है गीत के बोल है, मेरे दिल ने तड़प के जब तुम्हारा नाम पुकारा, ये अगर आप हमें फिल्म का नाम भी बता देते तो मेरी आसानी हो जानी थी थोड़ी सी। ठीक है, मेरे लिए काम आसान हो जाता। मेरे दिल ने, ठीक है, अब तड़प वाला आ ही गया, किशोर कुमार का गाना। ठीक है जी, ये गाना प्ले करेंगे हम। अगला मैसेज आया जी, सत श्रीकाल दिल चाहता है रूबल जी, बलविंदर सरा गुंतास रसनदीप मनिंदर सरा पिंड मोरजन सिखा हनुमानगढ़ फिल्म अखियों के जरोके से टाइटल सॉन्ग आवाज़ हेमलता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, गुड इवनिंग सर, आई लाइक योर शो, या आई लाइक योर शो एंड प्लीज प्ले दिस सॉन्ग दिल ने ये कहा है दिल से। ओके जी, फिल्म जीने की राह आने से उसके आई बहार, प्यार भरे नमस्कार जी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान। ठीक है जी, अगला मैसेज, पिंड हीरावली जिला फाजिलका तो सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदू पार्वती हिमांशु गुदारा, सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं जी, रात उस प्रोग्राम में जुड़ के बहुत ही वधिया लगता है जी, अज हो सके तां लोफर सुनदा गीत, अज मौसम बड़ा बेईमान है, गीत सुना दिओ, हुण बारिश हो रही है, बार बारिश हो रही है, सही गल है, कित्थों गल करन दे भला फाजिलका तो। अच्छा जी, ओके जी, फिल्म तरशूल गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा कपिल चिंपा ईशान चिंपा पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करे जी। मैसेज तो शामिल हो गया थोड़ा जी, चलो फिलहाल है गाना सुन लेने हैं कि मेरे दिल ने तड़प के जब तेरा नाम पुकारा।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, लेट वाली गुड इवनिंग। रात दे 10 बजे के ने एफएम रेनबो ते समूह च का प्रोग्राम शामी गजल दा। उठते नहीं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, किस दर्ज ना उम्मीद है परवरदिगार से। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो इस प्रोग्राम विच असी सुनदे हां खूबसूरत गजलां, कोशिश करदे हां पढ़न दी, उन्हां नूं शेरो शायरी करदे हां। सो उम्मीद करदे हां कि प्रोग्राम तुहानूं एक चंगा तैयार करके तुहानूं पेश किया जाए, तो तुसीं पसंद करो इस प्रोग्राम नूं। बाकी तुसीं भी इस प्रोग्राम दे विच अपनी हाजरी लगा सकते हो, अपनी शायरी, अपनी गज़ल की फरमाइश भी सानूं साडे व्हाट्सएप नंबर ते भेज सकते हो।

तेरे सितम की जुमाना दुहाई देता है, तेरे सितम की जुमाना दुहाई देता है, कभी ये शोर तुझे भी सुनाई देता है। ये बड़ा खूबसूरत शेर है जिसे लिखा है खाकान खावर साहब ने। 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम शामी गजल अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल।

हमारे सर पे तब कोई जहां होता नहीं था, हमारे सर पे तब कोई जहां होता नहीं था, जमीन होती थी लेकिन आसमां होता नहीं था। हम अक्सर खेल में हारे हैं उससे इस तरह भी, हम अक्सर खेल में हारे हैं उससे इस तरह भी, वहीं पर ढूंढते थे जहां वो होता नहीं था।

निकलते थे हमारे बात के मतलब हजारों, निकलते थे हमारे बात के मतलब हजारों, जो कहना चाहते थे वो बयां होता नहीं था। मैं खाली वक्त में टूटे सितारे जोड़ता था, मैं खाली वक्त में टूटे सितारे जोड़ता था, तुम्हारा हिजर ऐसा रायगा होता नहीं था। खुदा भी साथ रहता था हमारे जमीन पर, खुदा भी साथ रहता था हमारे इस जमीन पर, ये तब की बात है जब आसमां होता नहीं था। एक खूबसूरत गजल जो है वो लिखी है आशु मिश्रा जी ने, जो कि भारत के बरेली से हैं और मात्र सिर्फ 33 वर्ष के हैं। क्या बात है।

जी दोस्तों, इन्जॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से अपने दोस्त मोहित रूपल के नाल। समा हो चुका रात के 10:00 पूरे 37 मिनट।

धीरे धीरे चलकर आऊंगा तेरे करीब मैं, धीरे धीरे चलकर आऊंगा तेरे करीब मैं, मुझे तू जरा कस के गले लगा लेना। 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी इंजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।